तो बताओ ये फायदा ज्यादा काबिल कदर है या ये कि तुमने अपना बदला ले लिया, दिल का दिल की भड़ास निकाल ली, क्या दिया तू बेवकूफ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तल्कीन फरमाई कि गाली का जवाब गाली, अगरचे यानी हक है, कुरान कहता है जितनी कोई जुल्म करे उतना ही तुम भी कर सकते हो उसके साथ, लेकिन हक है, लेकिन हक को इस्तेमाल करना से बेहतर यह है कि माफ कर। वलमन सबर वगफरा इन ذلك من عزم الامور, जो सब्र करे और माफ कर दे तो ये बड़े अजायम उमूर में से है। और फरमाया कि इदफा बिल्लती ही अहसन सैया, किसी ने तुम्हारे साथ बुराई की है तुम उसका मुकाबला अच्छाई से करो। बुराई का मतलब बुराई से देने के बजाय अच्छाई से मुकाबला करो। तो फरमाया फैजल लदी बैना का बैना अदावतुन का ना हो वली हमीन, तो जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी वो तुम्हारा ऐन बहुत जिगरी दोस्त हो जाएगा। लेकिन साथ फरमाने वमादीना सबर, ये काम उसी का है जिसने अपने आप को सब्र की आदत डाली हो। वमादीम, मगर और ये बहुत ही खुशकिस्मत आदमी का काम है कि ये काम करे कि बुराई का बदला अच्छाई से दे। कितने तारीफ फरमाई अल्लाह तमाम सबर हमारा, तो यह आदत डाल क्या है मियां, बदला लिया ना लिया, अगर ले लिया तो क्या, लेकिन ना लिया और अल्लाह तबारक मुताला के लिए माफ कर दिया तो देखो क्योंकि अल्लाह ताला पता नहीं, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दूसरे को जो माफ कर दे तो मैं उस दिन उसको माफ करूंगा जिस दिन उसको माफी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सबसे ज्यादा जरूरत तुमको आखिरत में होगी माफी की, उस दिन मैं उसको माफ कर दूंगा कि मेरे बंदे को उसने माफ कर दिया तो मैं इसको माफ कर दूंगा। तो फला तो आइये हुए माता फिर नमाबाल निकाले, भाई ये सब नसीहतें ये सब सुन्नतें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नतें सिर्फ जवाहिर की हद तक महदूद नहीं है, ये सब सुन्नतें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हम सबको इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सारी नसीहतें जरूरी नसीहतें जिंदगी में अपना ले, झगड़े खत्म हो जाए, अदावतें मिट जाए, फिक्र खत्म हो जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इशारात पर अमल करें। अल्लाह, एक और हदीस पढ़ लेते हैं। हजरत कैस इब्ने बिशर तगलिबी फरमाते हैं कि मेरे वालिद हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मजलिस में बैठा करते थे। अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं और ये वो सहाबी हैं जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब दिया था हकीम हाज़िहिल उम्मा, हकीमुल उम्मा का खिताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। ये हकीम है इस उम्मत के, इतने बड़े जिसको हुजूर फरमाते हैं हकीमुल उम्मा, अंदाजा लगाइए। तो वो दमिश्क में रहते थे, तो वहां एक और सहाबी रहते थे, उनका नाम था सहल इब्न हंजलिया रजी अल्लाह तआला। ये सहल इब्न हंजलिया जो सहाबी थे ये बड़े गोशा नशीन किस्म के बुजुर्ग थे, लोगों के पास ज्यादा आना जाना नहीं, मिलना जुलना नहीं, बस नमाज को आए मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ी जाकर अपना जिक्र तस्बीह मशगूल हो गए, ज्यादा लोगों से मिलते जुलते भी नहीं थे। तो कहते हैं कि एक दिन हम बैठे होते हैं तो वो दरगाह के पास, तो ये पास से गुजरे हर साल इब्न हंजलिया, तो हजरत अबू दर्दा ने उनसे खिताब करके कहा कि कलिमतन तनफउना वला तदुर्रो, कि हमें एक ऐसा कुछ कलिमा सुना दीजिए जिससे हमें फायदा पहुंचे, आपको तो कोई नुकसान होगा नहीं एक कलिमा अगर आप हमें सुना देंगे, तो नसीहत की कोई बात हमें कह देंगे तो आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा नफा हो जाएगा। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अबू दर्दा वो सहाबी जिनको हुजूर ने हकीमुल उम्मा फरमाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस के अमीन और रावी, लेकिन एक गैर मारूफ से सहाबी है सालिब बिन हंजलिया, वो पास से गुजर रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि जरा हमें कोई नसीहत की बात सुना दी। हमारे मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि भाई ये नसीहत भी अजीब चीज है, ये किसी अल्लाह वाले से जो भी मिले, अल्लाह वाले क्या किसी भी आम मुसलमान से भी नसीहत ले लिया करो, इस वास्ते कि ये मत देखो कि वो बड़ा है कि छोटा है, क्या पता अल्लाह तबारक व तआला उसकी जुबान पर ऐसी नसीहत जारी फरमा दे जो तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल पर असरअंदाज हो जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए।